ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद

0: की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ ही आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 1,20,00,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

0: बिना ज्ञान दे आजादी हमेशा दुखदाई हुंदी है, ते बिना स्वतंत्रता ज्ञान हमेशा बेकार।
1: आओ सर्वन करदे हां भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

0: ये भोज समारोहे भागं ग्रहीतुं नौकया यात्रां कुर्वन्तः आसन्। नौकायां प्रायः 15 20 पर्यन्तं जनाः आरूढाः आसन्। उत्तम चिकित्सायै अन्ये 7 जनाः अन्यस्मिन् चिकित्सालये प्रेषिताः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधा कृष्णन वर्येण तथा प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च अस्यां नौका दुर्घटनायां जनहानिं प्रति दुःखं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: बिम्स्टेक सदस्य देशानां गृहमन्त्रिणां प्रथमं सम्मेलनं नवदिल्ल्यां दिल्ली घोषणायाः स्वीकरणेन सम्पन्नम्। अस्मिन् घोषणापत्रे बिम्स्टेक सदस्य देशैः आतंकवादं समेत्य सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य तथा आतंकवादं पोषकस्य हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च कट्वालोचना कृता। घोषणापत्रे सदस्य देशैः संयुक्त राष्ट्र चार्टर इत्येतस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुसारेण समग्रतया निरन्तरं च प्रयत्नैः आतंकवादस्य तथा हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य च निवारणं प्रतिरोधः समूलोच्छेदनं च कर्तुं स्वसंकल्पः पुनरुक्तः। सदस्यदेशैः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अधिकारपत्रस्य अन्ताराष्ट्रिय विधेः च अनुरूपं व्यापकतया निरन्तरं च प्रयत्नं कृत्वा आतंकवादस्य तथा आतंकवादं प्रोत्साहयतः हिंसात्मकस्य उग्रवादस्य निवारणं प्रतिरोधः उन्मूलनं च कर्तुं स्वकीयः संकल्पः पुनः दृढीकृतः। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य हैदराबादे चतुर्थे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलं सम्मुखीकरिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले स्वेद दे 7 बज रहे ने। पेश नी हुण तक दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी अनिश्चितता दे बावजूद भारत दा आर्थिक विकास मजबूत नीं ते टिक्या होया है। सूचना ते प्रसारण अते संसदीय मामलियां बारे राज मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने औहदे ते राज्यसभा दी मेंबरशिप तो अस्तीफा दे दित्ता। यूपीआई राही गाहक तो व्यापारी दरमियान 2000 रुपए तो वध दे लेन देन ली यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट हुन दिवाली तो बाद लागू कीता जावेगा। भारत ने दोहराया कि लद्दाख भारत दा एक अटुट हिस्सा है अते चीन वल्लों किसी भी तरह दा इनकार इस ताकत तत्व नूं बदल नहीं सकदा। केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन लिए नवी दिल्ली विच एक उच्च पदरी अंतर मंत्रालय समीक्षा मीटिंग कीती। भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लाया कि लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी SIR दे मुद्दे ते देश नूं गुमराह कर रहे हन। पंजाब विच SIR मुकम्मल, वोटरां दी गिनती 2.1 करोड़ तो वध, रहिंदे लोकां लई जल्द ही लाए जाणगे विशेष कैंप। पंजाब दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां वल्लों SAS नगर विखे अति आधुनिक बायो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरी दा उद्घाटन। अमृतसर देहाती पुलिस ने पाकिस्तान दी ISI दी हिमायत प्राप्त गैर कानूनी हथियार अते तमाखा खेज सप्लाई नैटवर्क दा पर्दाफाश करदिआं पुलिस अदारियां ते हमला करन दी साजिश नूं नाकाम कीता। अते मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच आज अते पलके लिए कई थावां ते गड़े मारी अते बारिश दा ऑरेंज अलर्ट जारी कीता। एसन हुन तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले स्वेद दे 7:02 होए ने। पेश है प्रोग्राम सोनी स्वेर।

लो जी, इस खूबसूरत गीत तो बाद फिर तो शुरू कर दें हाँ गल्लां दा सिलसिला। प्रोग्राम चल रहा है सोनी सवेर ते मैं हाँ थोड़ी दोस्त मोनिका। दोस्तों कहंदे ने कि दिन दा पहला थॉट, पहला विचार तुहाडे पूरे दिन नूं एक नवी सेध दिंदा है, एक नवा दृष्टिकोण ते एक नवा नजरिया दिंदा है। ते अज असीं वी एक छोटा जिहा नजरिया लेके आए हां और उम्मीद करदे हां कि इह तुहाडी जिंदगी दे विच एक खूबसूरत सवेर लेके आएगा। कहंदे ने कि जे कोई अपनी गल करे ता समंदर बन जाओ, अखबार नहीं कि हर किसी नूं दसदे फिरो। इस गल दा मतलब पता की है दोस्तों, जदों कोई इंसान बड़े विश्वास दे नाल तुहाडे नाल कोई गल सांझी करदा है, अपना दुख दसदा है, अपनी जिंदगी दा कोई राज दसदा है जिहड़ा ओह किसी नूं दस नहीं सकदा, तां सानूं सिर्फ ओहदी गल नहीं सुननी चाहीदी बल्कि ओहनूं इस गल दा भरोसा दवाना चाहीदा है कि इह गल मेरे तक ही रहेगी। किसी नूं गल कहना सौखा है पर उस गल नूं अपने तक ही रखना इंसानियत दा तकाजा है। समुंदर दे विच किन्नियां सारियां नदियां नहरां मिलदियां ने पर ओह कदी वी इस गल दा ढंडोरा नहीं पिटदा। ते अजकल दा इंसान मौका मिले ते दूजियां दे परखच्चे उड़ा दिंदा है, पर चंगा इंसान उही है ना दोस्तो जिहदे नाल गल करन नूं जी करदा है, क्योंकि सानूं विश्वास हुंदा है कि ओह साडी गल किते वी नहीं करेगा। इस करके दोस्तो अपने आप नूं अजिहा बनाओ कि हर कोई अपने दिल दी गल थोड़े नाल सांझी करे ते तुसी ओनू हिम्मत दिओ, ओनू विश्वास दिओ ते ओनू दसो कि जिंदगी किन्नी खूबसूरत है, इन्हां औकड़ां तों बाद जीत जरूर मिलेगी। सुन लो प्रोग्राम सोनी सवेर, वेला हो चुका है एक प्यारे जी गीत दा।

दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सोहनी सवेर ते आज दी सोहनी सवेर दे विच क्या सोहना मौसम है। चिड़ियां दी चहचहाट ते फिर फुल्लां दा खिड़ना, पत्तियां दा सरसर करना ते सोहनी हवा दा वगणा। तुहानूं पता कि अज जदों मैं रेडियो स्टेशन दे विच पहुंची हां, बाहर दा वातावरण देख के मजा ही आ गया। दिल कीता कि पहला खूब सारी सैर की जाए, ते सैर करना तां असीं तुहानूं वी सिखाउणा है। ओ इस तरह कि सवेरे तुसी आकाशवाणी जलंधर दा चैनल सैट कर लेना है, नाल नाल सैर करनी है, कसरत करनी है ते साडे आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्रामां दा लुत्फ उठाना है। दोस्तों आज दे दिन जिथे असी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे दी गल कीती है, उथे दो चीजां होर बड़ी ही खास ने। नेशनल डेजर्ट डे यानी के मिठाइयां खाण ते खवाण दा दिन, दूजे पासे है नेशनल स्टॉप बुलिंग डे यानी के किसे नूं तंग परेशान करना, उसदा दिल दिखाउणा, इस खिलाफ आवाज चुकन दा दिन। दोस्तों तुसी सोचोगे कि जलेबी ते बुलिंग दा की संबंध हो सकदा है, मिठाई ते किसी नूं तंग करन दा की संबंध हो सकदा है। भाई संबंध बड़ा डूंगा है जी दोस्तों। जलेबी भावे टेढ़ी होवे पर साडी सोच, साडी नीत ए सीधी होनी चाहीदी है, ए नहीं टेढ़ी होनी चाहीदी। सानू गुलाब जामुन वांगर नरम बनना चाहिदा है, लड्डू वांग सानू वड्डियां वड्डियां खुशियां वंडनियां चाहीदियां ते बर्फी वांग अपने बोलां दे विच मिठास घोलनी चाहीदी है। क्योंकि मिठाई खाण नाल मुंह मिठा हुंदा है, पर मिठे बोलां दे नाल असी लोकां दे दिल जीत सकदे हां। सो अज दा सुनेहा इस प्रोग्राम दे विच यही दोस्तों देना चाहवांगे कि मिठाई खाओ, प्यार वंडो, पर किसे दा दिल ना तोड़ो। प्रोग्राम सोहनी सवेर दे विच एक होर गीत तुहाडा इंतजार कर रहा है, आओ फिर सुनदे हां।

दोस्तों कहंदे ने कि सोना इंसान नहीं हुंदा, सोने ओदे विचार हुंदे ने, सोने ओदे बोल हुंदे ने, सोना ओदा नजरिया हुंदा। प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच अपने सारे श्रोतियां दा एक बारी फिर तो स्वागत करदे हां। दोस्तों जेडे साडे शेर ते शेरनियां 10वीं ते 12वीं दे बोर्ड एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने, भई उहनां दा हाल चाल भी पुछ लिए भी की हाल चाल है। किताबां खुल्लियां पईयां ने, अखां विच नींदरां तां नहीं भरियां पईयां, किते दिमाग दे विच इक्को सवाल तां नहीं घूम रिहा पेपरां चों पता नहीं की बनूगा। ओ बई घबराण दी लोड़ नहीं है, ये पेपर है, कोई जंग थोड़ी है। याद रखो पेपर तुहाडी तैयारी परखदा है, काबिलियत नहीं। दसवीं होवे या बारहवीं, दोस्तों हर जमात जिंदगी दा एक नवा मोड़ हुंदी है। नंबर जरूर मायने रखदे ने, इंपोर्टेंस रखदे ने, पर तुहाडी मेहनत, तुहाडा हौसला, तुहाडी सोच इस ज्यादा इंपोर्टेंट है। सो सिर्फ किताबां दे विचों सिलेबस नहीं पढ़ना, जिंदगी दी जांच भी सीखनी है। जिहड़े लोग ये कहंदे ने कि यार मेरे कोल टाइम ही नहीं है, उन्हां नूं एक खास गल दसी अज दे प्रोग्राम दे विच। जे टाइम घट है तुहाडे कोल तां टेंशन नहीं लैणी, प्लानिंग इन्नी वधिया बनाओ कि मोबाइल नूं साइड ते रख के तुसीं अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई ते लगाओ। रोज थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट नू पढ़ो, पुराने प्रश्न पेपर जरूर हल करो, नींद पूरी लो ते अपने आप ते भरोसा रखो। एक छोटी जी रिक्वेस्ट उना पेरेंट्स नू जेडे अपने बच्चों तो बहुत उम्मीदा लाई बैठे ने, उना नू एक छोटी जी बेनती करना चाहवांगे आकाशवाणी जलंधर दे माध्यम तो, कि बच्चों नू सिर्फ नंबरां नाल ना तोलो, उना दी मेहनत दी भी कदर करो, क्योंकि कई बार तुहाडे दो प्यार भरे बोल तुहाडे बच्चे नू हौसले दी नवी उड़ान दे सकदे ने। सो दोस्तो डरना नहीं, डटना है, रुकना नहीं, वधना है, नंबरां दी चिंता छड़ के अपने आप नू बेहतर बनाना है। ते लो जी इस प्रोग्राम दे विच अगला गीत तुहाडे कन्नां दे विच गुनगुनाहट पैदा करन लई बिल्कुल तैयार है, ते आओ फिर मिलके सुनदे हां।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान

0: आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आ ही गया है बम्बई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नजर रमजन मिलाउंदे हो कदे इधर कदे उधर, वफा अपनी जताउंदे हो कदे इधर कदे उधर। किसे दिन डांग खड़केगी, किसे दिन खून डुलेगा, जो लौंदे हो बजाउंदे हो कदे इधर कदे उधर। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सोनी सवेर अपनी दोस्त मोनिका दे नाल। दोस्तो जदों असी अमनो अमान दी गल करदे हां ते सब तो पहला शुरुआत पता कित्थों होनी चाहिदी है, अपने दिमाग तो। साडा दिमाग एक ऐसा अंतरद्वंद करदा है अपने आप दे नाल, एक ऐसी लड़ाई छेड़दा है कि असी असल मुद्दे तो हट के उस लड़ाई दे विच ही फसे रह जांदे हां। इस लड़ाई झगड़े दे विच खुशी दी गल ए है कि इस साल नोबल शांति पुरस्कार नवी पिल्ले नूं मिलिया है। ओ भारतीय मूल दे दक्षिणी अफ्रीकी कानून दान ने। उन्हां ने मनुखी अधिकारां ते अंतरराष्ट्रीय कानून लई इन्ने सारे काम कीते ने कि उन्हां नूं शांति दा नोबेल पुरस्कार मिलिया है। अपने दोस्तां दी जानकारी दे विच वाधा पाउण लई इह वी दस दईए कि नोबल पुरस्कार अल्फर्ड नोबल होरां ने शुरू कीता सी, जिहड़े डायनामाइट दे खोजी सन। उन्हां ने अपनी वसीयत राहीं नोबल पुरस्कारां दी शुरुआत लई धन रख्या सी। पहले नोबल पुरस्कार साल 1901 दे विच दित्ते गए सन। नोबल शांति पुरस्कार नार्वे दी राजधानी ओस्लो विच दित्ते जांदे हन, जबकि होर नोबल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन विच दित्ते जांदे हन। नोबल पुरस्कार सिर्फ व्यक्तियां नूं ही नहीं मिलदे, इह संस्थावां नूं वी मिलदे ने। नोबल पुरस्कार सानूं इह वी सिखांदे ने दोस्तो कि ज्ञान हिम्मत ते मनुखता दी सेवा करन दे नाल पूरी दुनिया दे विच असी बदलाव लैके आ सकदे हां। ते कहंदे ने ना, चैरिटी बिगिनस एट होम। सब तो पहला इह शांति दा काम अपने घर तो शुरू करना चाहिदा है। छोटियां छोटियां गल्लां दे विच अपने दिमाग नूं अपनी एनर्जी नूं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिदा। माड़ी ताड़ी गल हो जाए तां लेट इट गो कर दो, परा हो जान दो, इदां दे अल्फाज़ां दे नाल अपने आप नूं हल्ला शेरी दो। बाकी तुहानूं एनकरेज करन वास्ते, थोड़े दिन दे विच ऊर्जा भरन वास्ते असीं लैके आने आं प्रोग्राम सोनी सवेर। ते लो फिर हसदे चेहरियां वास्ते इक हसदा मुस्कुरांदा गाना पेश करदे आं।

सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी गल्ला करनिया टेर सुखलिया ने जिन्हें देश सेवा विच प्यार पाया उन्हें लख मुसीबतां चलिया ने। प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच अपने सारे दोस्तों का एक बार फिर तो निघा स्वागत करते हुए आओ दोस्तों थानू लेके चलदे हां एक ऐसी जन शक्ति दे वल जिहड़ी हौली हौली लोकां दी सोच बदल रही है ते भारत दा नां पूरी दुनिया दे विच रोशन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली दे यशो भूमि विखे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 दे 10वें संस्करण दा उद्घाटन कीता। इस समागम दे विच 5G 6G ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेमी कंडक्टर वर्गियां आधुनिक तकनीकां टेक्नोलॉजीज ते ध्यान दिता गया। दोस्तों थोड़ा पता है इहदा विशा की सी स्केल विदाउट बाउंड्रीज यानी कि तरक्की दियां कोई हद्दां नहीं हुंदियां। दोस्तों अज मोबाइल सिर्फ फोन नहीं रह गया सुनेहे भेजन दा साधन नहीं रह गया इस तरह ही विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकदे ने छोटे व्यापारी अपने कारोबार नूं अग्गे वधा सकदे ने ते लोक डिजिटल भुगतान राही अपने लैण देण नूं आसान बना सकदे ने। दोस्तों इस पहलकदमी दा सब तों वड्डा मकसद पता की है साडे प्रधानमंत्री साहब दी इह सोच है कि भारत सिर्फ तकनीक दी वरतों करन वाला देश ना बन के रह जाए सगों नवीआं तकनीकां बनाउण वाला एक आधुनिक देश बने। दोस्तों जेकर असी नौजवानां नूं तकनीकी सिख्या नवे हुनर ते सही मौके दवांगे ते भारत दी तरक्की नूं होर मजबूती मिलेगी। याद रखो दोस्तों जदों तकनीक हर नागरिक तक पहुंचदी हो जाएगी ते तरक्की दे मौके अपने आप वध जाणगे। ते आओ दोस्तों फिर मिलके एक ऐसा भारत बनाइए जो तकनीक विच अग्गे होवे मौकियां विच बराबर होवे ते दुनिया दे विच अपनी वखरी पछाण बना सकदा होवे बिल्कुल उसे तरह जिस तरह अपनी एक सोहनी जी पछाण बना रहा है ए प्रोग्राम सोहनी सवेर जिस नूं तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर तों अपनी दोस्त मोनिका दे नाल।

झूठ सच बोलदे आ उदो भी साडे चेहरे तो पता लग जांदा है। जदो असी दिल तो धुरो रिश्ते निभाउने आ तां वी साडे ख्यालां तो साडी समझ तो इस गल दी परख हो जांदी है। बाकी दोस्तो गल इदां है, सवेरे उठ के सूरज दे मत्थे लगना, पंछियां नाल गल्लां बातां करनियां, कुदरत नाल सांझ पानी ते अपने आस पास घूम रही तितलियां नाल दोस्ती करना, इस तो वधिया शौक कोई हो ही नहीं सकदा। कदी अपने मोबाइल नूं थोड़ा जिहा परां रख के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो छुट्टी लै के अपने आले दुआले देखो, दुनिया किन्नी खूबसूरत है। जरा इमेजिन करो, अपने दिमाग दे घोड़े दौड़ाओ, थोड़ी अपनी कल्पनाशीलता नूं वधाओ ते तुहानूं पता लगेगा कि बाग दे विच टहलदे टहलदे बूटियां नाल गल्लां करदे करदे कोल लग्या होवे आकाशवाणी दा चैनल, वधिया जे तुसीं प्रोग्राम सुन रहे होवो, वधिया वधिया गीत सुन रहे होवो ते नाल नाल सैर कर रहे होवो, मजा ही दुगना हो जांदा है जी। इहनूं कहिंदे ने सोहणी सवेर। उम्मीद करदे हां कि साडे सारे दोस्तां ने अज दी सोहणी सवेर दा लुत्फ उठाया होवेगा ते अपने मन नूं समझाया होवेगा, बल्ले शेरा हारना नहीं डट के अगे वधना है। तुसी अगे वधो ते अपनी अपनी मंजिल हासिल करो। अज दा दिन कल नालों भी बेहतर होवे इसे उम्मीद दे नाल हुण थोड़े तो जान दी इजाजत चाहांगी। रब राखा, सुनदे जाओ आकाशवाणी जलंधर।

0: ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
2: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
3: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित

0: और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से

0: इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
1: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खंबात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
1: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
1: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदांबी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
6: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठ।

0: बैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृह मंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग। विदेश मंत्रालय ने कहा पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है एआई से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है नीट जेईई की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास एआई ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पांच मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी कौमांतरी क्रिकेट स्टेडियम च खेड़ा जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2026 तन्वी शर्मा के किदांबी श्रीकांत ने दूजे दौर में प्रवेश कर लिया। तो आखिर खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली वीडियो संदेश राही वैश्विक भारत अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधन करेंगे। बिम्सटेक मुल्कों ने सरहद पारों दहशतगर्दी के सारे रूपों की कड़ी निंदा की। केंद्रीय वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंजाब ते हरियाणा च पराली सड़न को रोकने लिए जमीनी पद्धर से निगरानी ते कार्रवाई को तेज करने की जरूरत पर जोर दिता है। बिहार च वैशाली के राघोपुर च एक किश्ती पलटन कारण 13 लोगों की मौत। मौसम विभाग वालों अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबों च गरज चमक नाल गड़ेमारी की पेशीनगोई। भारत और वैस्टइंडीज दरमियान पांच मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच आज हैदराबाद च खेडा जाएगा। इस राष्ट्र खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर 1:10। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर के 8:40 हो रहे हैं। अज विश्व मानक दिवस के मौके पर आओ सुनिए भारतीय मानक ब्यूरो के उप महानिदेशक श्री दीपक कुमार सिंगला का सुनेहा।
2: नमस्कार। आज का कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विश्व मानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना तथा मानकों के विकास में योगदान देने वाले विश्व भर के हजारों विशेषज्ञों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानक दिवस किसी एक खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में मानक क्यों महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में इसका उत्तर है कि मानक केवल तकनीकी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुणवत्ता, सुरक्षा, दक्षता और विश्वास की एक साझा भाषा कॉमन लैंग्वेज ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड ट्रस्ट हैं और सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानक गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए मापनीय मानदंड मेजरेबल बेंचमार्क्स निर्धारित करते हैं। प्रत्येक मानक के पीछे एक व्यापक पब्लिक पर्पस होता है, जैसे कि विद्युत उपकरणों के लिए मानक किसी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। निर्माण सामग्री के लिए मानक हमारे बुनियादी ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करते हैं। ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक ऊर्जा की कम खपत, कम लागत और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए मानक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य मानकों का निर्धारण करना है। मानक निर्धारण के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स का भी संचालन करता है, जैसे कि ISI मार्किंग स्कीम, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए हाल मार्किंग स्कीम। यद्यपि भारतीय मानकों का अनुपालन जनरली स्वैच्छिक है, हालांकि कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर लोगों के हितों और सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय मानकों का अनुपालन

0: केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करके अनिवार्य किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 720 से अधिक उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सही अर्थों में हमारा उद्देश्य इस अवसर पर उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, रेगुलेटरी बॉडीज, अकेडमिया, R&D इंस्टीट्यूशंस तथा अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना भी है। इसके माध्यम से हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानकों की भूमिका के प्रति साझे दृष्टिकोण शेयर्ड विजन को और अधिक सुदृढ़ भी करना चाहते हैं। विश्व मानक दिवस 2026 मनाते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था और व्यक्ति मात्र की नहीं है। इस व्यवस्था में प्रत्येक हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस विश्व मानक दिवस पर हम सभी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण विषय के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनर्दोहराएं और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। आप सभी को विश्व मानक दिवस 2026 की पुनर् बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:46 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
2: बच्चे बुड्ढे अते जवान 100 गल्ला दी एक गल्ला सही। सिर्फ पैसे भेजन ले QR कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है, पैसे मिलन ले नहीं।
3: RBI कहंदा है QR कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल।
1: प्रोग्राम महक पंजाब दी शुरुआत कर रहे हैं जी फिल्म यार अनमोले दे इस गीत दे नाल जिसने गाया शाहिद मालिया ने।

दोस्तों, रहमान दी फिल्म रोज़ा ने भारतीय सिनेमा विच डिजिटल साउंड इंजीनियरिंग दा इनकलाब लिया दिता। टाइम मैगजीन ने रोज़ा नू दुनिया दे 10 सर्वोत्तम साउंड ट्रैकां विच शामिल किया सी। इस तो बाद बॉम्बे, रंगीला, ताल, दिल से रहमान साहब ने हर फिल्म विच भारतीय शास्त्रीय संगीत नू पछमी इलैक्ट्रॉनिक धुनां नाल अजिहा जोड़िया कि सुनन वाले दंग ही रह गए।

दोस्तों, AR रहमान नू अपने करियर विच कई पुरस्कार मिले, जिन्हां विच 7 नैशनल फिल्म अवार्ड, 2 अकैडमी अवार्ड्स, 2 ग्रैमी अवार्ड्स, 1 बाफ्टा अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 7 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स,

15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 18 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ दे अलावा 2010 विच उन्हां नूं देश दे तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण नाल भी सम्मानित किया गया। अज वो संगीत बनाउण दे नाल नाल चेन्नई विच KM म्यूजिक कंजरवेटरी चला के बच्चों संगीत सिखा रहे ने। उन्हां दा संगीत सानू अहसास करवांदा है कि सुरां दी कोई सरहद नहीं हुंदी। एक चंगी धुन भाषा देश अते सभ्याचार दियां हदां पार करके सिद्धी दिल तक पहुँचती है। तो इस दे नाल ही अज दा AR रहमान ते आधारित प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल हुण अपनी दोस्त देविका नूं इत्थे ही खत्म करन दी दो इजाज़त।

0: सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अंतराल तो बाद प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हेलो फरमाइश।

हेलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो गया जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से प्रोग्राम लैके हाजिर हो गई है जी तुहाड़ी होस्ट ते दोस्त देविका भाई। दोस्तों तुहानू सारिआं नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत, इसलिए करना की है ये भी तुहानू सारिआं नू पता है, पर जिहड़े साडे नवे लिसनर साडे नाल जुड़े ने उन्हां लई दस देना जरूरी है भाई। इसलिए तुसी चुकना फोन ते मिलाना है साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342-143 ते नंबर मिला के पहुँच जाना जी साडे स्टूडियो, साडे नाल करनीआं गल्लां बातां, सानू दसनी है अपनी फरमाइश जिहड़ी असी पूरी करांगे। ते जिहड़े साडे सुनन वाले सानू जलंधर तों बाहरों कॉल कर रहे होणगे ना, उन्हां लई भी ये दस देना जरूरी है भी कॉल करन तो पहला ना जलंधर का एरिया कोड लगा लेना। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। सो फिर जो तक प्रोग्राम के पहले कॉलर का इंतजार करते हैं, प्रोग्राम जो तुहानू सुनवाने मोहित चौहान की आवाज़ विच फिल्म तमाशा का एक गीत

0: प्रोग्राम चल रहा है जी हेलो फरमाइश ते प्रोग्राम च हुणे तुसीं सुनिया मोहित चौहान दी आवाज़ च गीत मटर गश्ती। इस गीत तो बाद प्रोग्राम च साडे अज दे पहले कॉलर भी साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानदे आ कौन आए ने, कित्थों आए ने ते केड़ी फरमाइश लैके आए ने। हैलो
1: हेलो देविका मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल
1: रहे ने? सुखबीर सिंह छाजड़ी बोलदा मैम संगरूर कोलों।
0: सुखबीर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: हाल चाल मैडम बहुत वधिया ने। देखो तुहाडे कोल पहुंचण वास्ते बहुत मेहनत करनी पैंदी है जी।
0: ते देखो तुहाडी मेहनत ते शुरू शुरू च रंग लई, पहले कॉलर बन गए तुसीं है ना। कुमार सानू दी आवाज च।
1: हां जी हां।
0: लो जी ये गीत आ रहा है तुहाडे रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने।
1: ठीक है मैम, शुक्रिया
0: जी।

0: फिल्म जब प्यार किसी से होता है दे इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे अगले कॉलर भी आ पहुँचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने, कितों आए ने ते जानते हैं उन्हां दी फरमाइश। हैलो,
1: अपने तो दिल में ही रहते हैं, बस गैरों को याद किया जाता है। काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर आकाशवाणी में याद किया जाता है।
0: जी वहाँ
1: मैडम जी, जय माता दी।
0: जय माता दी जी, कौन बोल रहे ने ते कितों बोल रहे ने?
1: सतीश गुलियानी मार्केट दिलकुशा चै जलंधर रहिंदा अपने दोस्तां दे दिल दे अंदर, सारे नूं कहिंदा जी जय माता दी।
0: जी सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच। की हाल चाल ने? हाल चाल
1: तां
0: खैर
1: वधिया मैडम जी, फर्स्ट क्लास है। रेडियो नाल जुड़िया ते हाल चाल माड़ा हो ही नहीं सकदा।
0: जी जी, ये गल तां सही कही तुसी। ते अज
1: कहिंदे
0: केड़ी फरमाइश
1: दे विच
0: जी?
1: लोन बच्चे कहंदे जी सानूं कोई दसो तरीका वी जिंदगी किदां जीनी चाहीदी। मैं कहा जी जिंदगी लोन
0: जी
1: ते लावां दोनों सोच समझ के लैनी चाहीदी।
0: जी
1: लोन भी ज्यादा चढ़ जाए फिर उतरदा नहीं जी, चढ़ जाना लोगों की भी जिंदगी च उन्ना ही गुजारा करो जिन्ना तेरे को हैगा।
0: जी जी,
1: लावा भी लैनी है तो सोच समझ के लो, आगे बगे जाके कोई परेशानी ना हो।
0: चलो जी, ए दा होगी गल हुन, अपने गीत दसो केड़ा सुनना है।
1: दो रास्ते ला दो जी,
0: एक
1: चुप के तारे नजारे हो क्या बात हो गई।
0: जी जी,
1: हमारी फोन कॉल लगी दिल में आपसे मुलाकात हो गई।
0: लो जी, गीत जरूर आएगा तो हाड़े रेडियो सेट ते, पर अंतराल दा वेला हो गया है। अंतराल तो बाद इंजॉय करना जी गीत। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम।

0: मोहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च अगले कॉलर भी साढ़े को आ गए ने, आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: अटवाल नाल बड़ी हैबवाल लुधियाना तो बलदेव सिंह मदर बोल रहे हैं जी।
0: बलदेव जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: शुक्रिया जी, सब ठीक ठाक ने जी।
0: जी ठीक ठाक ही चाहिए, बहुत वधिया जी। ते गीत अज दस दो केड़ा सुनना चाहते हो, केड़ी फरमाइश पूरी कर दी?
1: मनोज जी पुरानी फिल्म जी शहीद
0: जी,
1: उसका गाना है लता मंगेशकर जी बाद जो भी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी।
0: लो जी ये गीत आ रहा तो हाडे रेडियो सेट ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लई।
1: शुक्रिया जी, ओके।

0: भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है।
1: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समान भागीदार के रूप में काम करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है। श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और फिलहाल व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 12% रही। देश में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। सरकार ने टीबी उन्मूलन के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके तहत जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज विजयवाड़ा पहुंचेंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वे कल राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4th T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए 3rd मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और के श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। उनका अगला मुकाबला जर्मनी की यवोन ली से होगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम शुरू हो चुक्या है जी। धमक जलंधर पैंदी, मैं हाँ निधि चुग। तो इस प्रोग्राम च साढ़े नंबर 9496536077 ते कई सारे स्रोतिया ने वट्सएप मैसेज किए ने ते दस्या है कि वो केड़ा गीत सुनना चाहते हैं। आओ फिर वेखते हैं कि सानू अज पहला मैसेज किदा आया जी। पहला मैसेज आया है कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा दा। अगले साथी ने जी ज़िला पंचकूला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि ते शुभम ते नाल लवली पिंड ते डाकखाना लोहगढ़ ठाकुरा वाला। ज़िला फिरोजपुर तो लिखते ने सवरन सिंह गिल दलजीत सिंह गुरनूर सिंह डॉक्टर राम कुमार नारंग ते बलदेव सिंह। अगले साथी ने जी सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि अश्विन मंगलाबेन ते राजेंद्र जी शाह पद्मा टॉकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश तो। पिंड शाहपुर मैतपुर तो लिखते ने बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुल जोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर ते हरप्रीत कौर के नाल ही गगनदीप सिंह। अगले साथी ने जी दतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि वर्मा

पारस मणिवर्मा, पुष्पेंद्र मणिवर्मा ते नोखेलाल वर्मा श्री फतेहगढ़ साहिब तो लिखते ने। रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर ते पिंड ते नथाना बठिंडा तो मैसेज है। हरजिंदर छिंदा दी आवाज़ विच ओ गीत सुनना चाहते ने, जरूर सुनावांगे जी। पर ए मैसेज इस तो इलावा आया जी, दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा ते कुणाल मेहरा दा। मनदीप सिंह दीपा लिखते ने जी, जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो। ते मलकीत सिंह कोठी वाले, मनजीत कौर बठिंडा तो, दीपेंद्र सिंह, गुरशब्द सिंह, जी सिंह कुड़ियाना, दर्शन सिंह, ये सब लिखते ने जी पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो। अगले साथी ने मखू तो बिरला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मनीष ते हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, सोनू पाटिया, पप्पी पाटिया, तमन्ना पाटिया जमशेदपुर तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां। फिलहाल बब्बू मान दी आवाज़ विच।

मेहरबान दोस्तो, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकां दा बेहद शुक्रगुजार हां जिन्हां ने अपने निमाने जे मान नूं मान बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे, मैं ऐसा थोनू प्यार दियां। मेरी उम्र हजारां साल होवे, हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही ते इश्क दे खाते खुलदे ते हर दिल चो आवाज की निकलदी है।

बेबी गरिमा बगड़िया गांव बांडेवाला फजिल का तो मलोट तो लिखते ने सतीश मिगलानी सीमा मिगलानी ते अनमोल मिगलानी संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे शाहजी नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो करणवीर हाउस तो मैसेज है जी भुच्चो बठिंडा पंजाब तो करमवीर प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन ते अभिजोत जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा पिंड अलवाना मियाना तहसील पायल जिला लुधियाना तो लिखते ने दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतवीर सिंह राजपूत रायपुर ते गुरदीप सिंह कटवाल मीतोबाई सुखचैन रानो परवीन नवीन अनमोल बूटा मनीता नवदीप खुशदीप निर्मल परमजीत गुरसेवक गुरबख्श साहिबा मिर्जा ए मैसेज है जी करनीखेड़ा फाजिलका पंजाब तो ते अगले साथी ने पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका विद्या देवी

0: गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन रानो, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श, साहिबा मिर्ज़ा, एम एस जी, करनीखेड़ा, फाजिलका, पंजाब तो। ते अगले साथी ने पिंड बणवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी, ते पिंड टानी लाल खां तो नोहर ते जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें, नछत्तर गिल ते गुरमीत ते नाल ही लैंबर हुसैनपुरी दी आवाज़ विच।
1: Life the lesson.

सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, पिंड दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश। तो मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो लिख देने, सोपान तायड़े, पी एस नहावकर, वसंतराव भोजने, ते मोहन करांगले, गिद्दड़ बहा तो मैसेज है मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, निताशा, कैरवी तनेजा दा। हरिंदर सिंह मोनी लिख देने, पिंड कुलारा, नाभा, पंजाब। तो मोहाली चंडीगढ़ तो मैसेज है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह दा। ते कालका तो लिख देने, शुभ चंद्र बजाज, साहिब बजाज, ते बिट्टा बजाज। अगले साथी ने जी नेक राम, यशपाल, राखा राम, कुंडू राम, बाबा राम, जनकर राम, मैरी कुले, जम्मू तो। अगली फरमाइश आई है पिंड ते डाकखाना खुईयां सरवर, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका तो आस्था, जयश्री, संतोष चावला, हेमन, दीपक, रमेश चावला दी। नाल ही लिखते ने रायजल, हेजल, विहान चावला, रिबू बिबू, वीहू चावला। अगले साथी ने प्रेम खुराना, परवीन खुराना, अलीशा खुराना, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या, अनुष्का, पिंड बिल्लीमार, जलालाबाद तो। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ तो लिखते ने कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ते ऋषभ मरावी। तो अगला मैसेज है सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा, तेग फतेह सिंह रखरा, ते जसगुन रखरा दा बागा पुराना तो। आओ फिर इन्ना सबदी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर करते हाँ हरभजन मान दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meter ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4th T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार, प्रोग्राम वसदे वेले लेके कोमल हाजिर
1: और नाल हाजिर है जी ज्योति लेके प्रोग्राम वसदे वेले। ते कोमल जी देखो बड़े ही पावन दिना दे विच अज साडी हाजिरी लगी है इस वेले च।
0: बिल्कुल तुहाडी गल सही है क्योंकि नवरात्रे चल रहे ने, चारों तरफ जड़ा ना भगती दा जड़ा एक आलम छाया होया है। मैं सही दसा और मंदिर सारे देखा जाए इन्ने सोने सजाए हुए ने और जगह जगह ते बच्चे जड़े ने ना वो बड़ी खुशी नाल झूम झूम के घूम रहे ने।
1: बिल्कुल, और देखो इन्होंने दिनों दे विच सच्ची श्रद्धा दे नाल सच्चे मन दे नाल व्रत उपवास भी सारे करते ने और कन्या पूजन किया जाता है।

लो जी, गीत तो बात तरोताज़ा होके एक बार फिर तो सी हाजिर हो गया और प्रोग्राम चल रहा है वास्ते वेड़े। और कुमल जी, असी जानकारियां मनोरंजन नाल नाल अपने स्रोतियां दे नाल सांझियां करते हैं। और देखो, जानकारियां दी गल करिए ते समय समय ते सरकार वालों बहुत सारियां योजनावां जिहड़ियां है उलीकियां जांदियां ने, जिस दी सांझ असी स्रोतियां नाल पांदे रहिंदे आ। इसे तरह आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार दी इक प्रमुख सेहत योजना है, जिसनूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और इस योजना के तहत देश के गरीब ते आर्थिक पक्षों जो कमज़ोर परिवार ने, उन्हां नूं जदों हस्पतालां दे विच भर्ती होना

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत

0: करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे CJP नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ हुण सुनदे हां साडे अज प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: कैंसर जेनेटिक्स क्लीनिक विच जांचे गए। उत्तरी भारत के कैंसर प्रभावित 1000 परिवारों विचों करीब 30% परिवारों विच अजिहे जेनेटिक बदलाव पाए गए ने जो जेनेटिक्स कैंसर के वधे हुए खतरे नाल जुड़े हुए ने। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष गुलिया ने दस्सिया कि जनवरी 2025 विच शुरू की गई अस्पताल की विशेष कैंसर जेनेटिक क्लीनिक वालों हुण तक उत्तरी भारत के 1000 तो वध परिवारों का मुलांकण अते काउंसलिंग की गई है। इसका उद्देश्य अजिहे व्यक्तियों की पछाण करना है जिन्हां विच लक्षण सामने आने तो पहला ही परिवारक लड़ी च कैंसर का खतरा हो सकता है। क्लीनिक मरीजां अते उन्हां दे परिवारां नूं कैंसर की जल्दी पछाण रोकथाम अते व्यक्तिगत इलाज बारे मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। एक खोज केंद्र भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग अधीन टाटा मेमोरियल सेंटर की एक इकाई है। नगर राज भाषा लागूकरण कमेटी जलंधर वालों हिंदी पंद्रवाड़े 2026 का समाप्ति समारोह सरहदी सुरक्षा बल जलंधर के रंगशाला विखे कराया गया। हिंदी पंद्रवाड़ा 14 सितंबर 2026 तो 28 सितंबर 2026 तक कराया गया, जिस दौरान राज भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तहत सरकारी दफ्तर में हिंदी की वध तो वध वरतन उत्साहित करने के उद्देश नाल वख वख मुकाबले कराए गए। इन्हां मुकाबलों विच होरनां तों इलावा आकाशवाणी जलंधर तों अनाउंसर पूनम राणी ने वाद विवाद मुकाबले विच पहला स्थान हासिल कीता। कविता पाठ मुकाबले विच ओ दूजे स्थान ते रहे। आकाशवाणी जलंधर दे ही सीनियर एओ सतीश शर्मा कविता पाठ मुकाबले विच तीजे स्थान ते रहे। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रतिष्ठा जैन आशु भाषण मुकाबले विच दूजे स्थान ते रहे। तस्वीर देख के कहानी लिखण च आकाशवाणी तों रजनी अव्वल नंबर ते रहे, जबकि इसे विषय ते दूरदर्शन तों रमणी सूद ने तीजा स्थान हासिल कीता। इस तों इलावा जलंधर दूरदर्शन तों इंजीनियर कौरव गोस्वामी ने आशु भाषण मुकाबले विच कौंसलेशन इनाम अपने नां कीता। समाप्ति समारोह विच डॉक्टर शिवदान सिंह भदौरिया प्रधान आमदन कर कमिश्नर अते प्रधान नगर राज भाषा लागूकरण कमेटी जलंधर मुख मेहमान वजो हाजिर रहे। समागम विच डॉक्टर अतुल फुलसले इंस्पैक्टर जनरल अते श्री कमलजीत सिंह DIG फ्रंटियर सदर मुकाम सरहदी सुरक्षा बल जलंधर छावनी की खास मौजूदगी रही। जलंधर के जिला मजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने भारतीय सिविल सेवावां कोड 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारा की वरतों करदया 24 अक्तूबर न भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट उत्सव के संबंध में शहर में कढ़ी जाने वाली शोभा यात्रा के रूट से 26 अक्तूबर न प्रगट उत्सव न संबंधित धार्मिक समारोहों के स्थान नेड़े मांस और शराब की विक्री से पाबंदी लाई है। इस नाल ही प्रादेशिक खबर खत्म हुई। साडा xhandle@AIRRN जलंधर राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: की कहा, तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: लाओ जी, आज तो हमने दसंगा वायरल ना होने दे तरीके।
4: ओ लोकी ता वायरल होने दे तरीके दस दे या, ते तू वायरल ना होंदा?
3: सोशल मीडिया ते वायरल होने नालों भी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना। ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि एचआईवी एड्स किवें नहीं फैलदा। एचआईवी एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
6: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म पत्थर के फूल दा। इस गीत नु आवाज दिती है लता मंगेशकर ते एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।

0: गुड फॉर अस, गुड फॉर द वर्ल्ड।
1: मोबाइल फोन उद्योग की मिसाल देंदे श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने शुरू में असैम्बली पर ध्यान केंद्रित किया तो फिर मोड्यूल और हिस्से पुर्जे के निर्माण में विस्तार किया। वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले चार साल 38 विकसित देशों व्यापार समझौतों पर दस्तखत किए हैं। नवी दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनमी फोरम में बोलदे श्री गोयल ने कहा कि भारत का टीचा भारतीय कारोबारों लिए बाजार पहुंच वधाउणा ते देश के बाजारों नूं विश्वव्यापी भाईवालों लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कैनेडा मैक्सीको मुरकोसर यूरेशिया और कई होर देशों व्यापार समझौतों पर गलबात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली में वीडियो संदेश राही बृहत्तर भारत दुनिया में भारत के सभ्याचारक संबंधों बारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संबोधन करेंगे। केंद्रीय सभ्याचार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कानफ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तीन दिन कानफ्रेंस दौरान 50 देशों के डेलीगेट राजदूत और विद्वान भारत के इतिहास और समकाली सभ्याचारक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वीडियो संदेश राही इकट्ठ को संबोधन करेंगे।

0: बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: उन्होंने कहा कि भारतीय एक्ट ईस्ट नीति दक्षिण पूर्वी एशिया नाल भारत के भाईवाल वजों काम करने की एक लंबे समय की वचनबद्धता है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर ते दक्षिण पूर्वी एशिया का समुद्री खेत्र आपस में जुड़िया हुआ जो उन्हां दी सुरक्षा नूं एक सांझी जिम्मेवारी बनाउंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात पोप लियो 14वें की सफल सर्जरी से खुशी प्रकट की है। सोशल मीडिया से श्री मोदी ने पोप के छेती और पूरी तरह ठीक होने और चंगी सेहत की कामना की। भारत और वैसट इंडीज विचकार पांच मैचों की 2020 सीरीज का चौथा मैच अज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेडा जाएगा। यह मैच शामी 7 बजे शुरू होगा। एतवार को इंदौर में तीजे 2020 मैच में वैसट इंडीज को 14 दौड़ों से हरा के भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 आगे है। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। इस नाल ऊर्जा सहयोग और दोहां देशों विचकार रणनीतिक भाईवाली मजबूत होगी। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लागत संबंधी पहलुओं के नाल नाल विश्वास ते साइबर सुरक्षा आलमी सैमी कंडक्टर मुल लड़ी विच तेजी नाल महत्वपूर्ण होंदे जा रहे हैं। भारत और कनेडा ने एक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते लिए गलबात तेज कर दी है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगुओं सौरव दास और आशुतोष रंका 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारत में 2015-2024 दरमियान टीबी के नवे केसों में 21% की कमी दर्ज की गई है। भारत और वैस्टइंडीज विचकार 5 मैचों की 2020 लड़ी का चौथा मैच आज शामी हैदराबाद में खेडा जाएगा। इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।

0: आ रही है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में इजहार ख्याल करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत का मकसद सेमीकंडक्टर के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और तैयार शुदा प्रोडक्ट्स की जांच के शोबे में खुद को एक काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर कायम करना है। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि पायदार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मुकम्मल इको निजाम तश्कील देना जरूरी है।
1: Materials are very important because that ecosystem takes a lot of time and effort to build. So we have to put in that extra effort to get that capability in our country in terms of understanding of the materials, handling of the materials, manufacturing them, processing them, storing them, using them in the chips or every other manufacturing process and making sure that we develop an ecosystem which becomes good for us, good for the world.
0: जनाब वैष्णो ने कहा कि भारत अपनी मईशत को मजबूत बना रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 बरस में मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमू घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का मकसद मालियाती, इकतसादी और तकनीकी शोबों में पायदारी और मजबूती को बढ़ाना है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने जहाज साजी से मुतालिक कौमी मिशन के तहत भारत की जहाज साजी की सनत को तआवुन फराहम करने की खातिर कर्ज खतरात से मुतालिक बीमे के 2 खसूसी प्रोडक्ट्स का ऐलान किया है। मुंबई में बहरी रियासती तरक्याती कौंसिल MSDC की 21वीं मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने कहा कि जहाज साजी के प्रोजेक्ट से मुतालिक क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी में बरामदात से मुतालिक प्रोजेक्टों का इहाता किया जाएगा, जबकि बिजनेस क्रेडिट शील्ड पॉलिसी शिप बिल्डर्स घरेलू प्रोजेक्टों को तहफ़ फराहम करेंगे। भारत की थोक कीमतों के इशारे WPI पर मबनी अफरात ज़र सालाना बुनियाद पर सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई, जो अगस्त में 9.92% थी। कॉमर्स और सनत की वजारत की तरफ से जारी किए गए अबूरी आदादोशुमार के मुताबिक मादनियाती तेल, गजाई अशिया, खाम पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कोयले और लिग्नाइट, बुनियादी धातु, केमिकल और कीमियाई मसनूआत, टेक्सटाइल, रबड़ और प्लास्टिक मसनूआत की ज्यादा कीमत की वजह गुज़श्ता महीने अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नज़रिए ने भारत की तरक्की और कौमी सलामती के इकदामात में अहम सुतून की हैसियत रखने वाले स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाया है।
2: अरुणाचल प्रदेश की सेला टनल इस नज़रिए के तई अहद बस्तगी की एक नुमाया मिसाल है। ये टनल स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम है। तवांग खित्ते को हर तरह के मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करती है। इस टनल को 9 मार्च 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नाम वक्फ किया था और ये सरहदी सड़कों की तंजीम BRO की तरफ से बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुकम्मल किया गया एक तारीखी प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल तकरीबन 13,000 ऊंचाई पर बनाई गई है और ये शुमाली हिमालयी खित्ते के दुश्वार गुजार रास्तों में इंजीनियरिंग की काबिले जिक्र कामयाबी को जाहिर करती है। ये टनल खास तौर पर बर्फबारी और दुश्वार मौसमी हालात में अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और तवांग के दरमियान ज्यादा काबिले एतबार कनेक्टिविटी फराहम करती है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि दरमियानी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले कवायद जवाबित पर अमल दरामद में इतफाकी राय, बाहमी मफाहमत और मुश्तरका मफादात क्लीदी रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अब वो दौर खत्म हो चुका है कि जब कोई मुल्क धमकियों के जरिए दूसरे मुल्कों पर अपनी शराइत मुसल्लत करता था। उन्होंने उजागर किया कि दुनिया एक नए बैन अल-अक़वामी निज़ाम की जानिब बढ़ रही है जिसमें ज्यादा तादाद में ममालिक आलमी मामलात में ज्यादा मौसर रोल अदा कर रहे हैं। دلی حکومت نے ایک قرارداد منظور کر کے وزیراعظم نریندر مودی کو عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کرنے کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے وزیراعظم نریندر مودی کو ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، ترقی کو فروغ دینے اور ریاستوں کی ترقی کو

0: तेज करने के लिए अथक मेहनत करने पर मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने जुमे तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मगरबी राजस्थान में गरज चमक के साथ झालावारी की भी पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अक्वामी मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने इतवार को इंदौर में तीसरे T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 14 रन से हराकर 2-1 की सबकत हासिल कर ली थी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आसियान मुश्तरका तहकीकी एजेंडा तैयार करने और बहरी सिक्योरिटी और उभरती टेक्नोलॉजीज पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज दी है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि दुनिया नए बैन अक्वामी निजाम की जानिब बढ़ रही है। कई ममालिक आलमी मामलात में वसी तर रोल अदा कर रहे हैं। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने कहा है कि मुल्क का सरकारी कर्ज का तनासुब मजमूई घरेलू पैदावार GDP के मुकाबले में 61% से कम होकर 55% रह गया है। इस साल सितंबर में थोक कीमतों के इशारे की अफरात जर बढ़कर 11.39% हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां कुमार सानू दी आवाज़ विच। ते इफ गीत है फिल्म दीवाना दा।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजर है फिल्म हीना दा। इस गीत नू अपनी मिठी आवाज़ नाल सजाया है लता मंगेशकर ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा विश्व जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।

0: इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडिल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
3: $10 trillion of GDP,
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग $10 trillion थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग $70 trillion की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य $115 trillion की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से $85 trillion की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
5: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
6: मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
7: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlert

0: को फॉलो करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
2: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में 2 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम

विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदिया प्रोग्राम रंगली धरती सुरेश कुमार सहदेव ते उन्हां दे साथियां दीआं गाईआं माता दीआं भेटां।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के नाल नाल विश्वास अते साइबर सुरक्षा आलमी सैमी कंडक्टर मूल लड़ी विच तेजी नाल महत्वपूर्ण हुंदे जा रहे ने। भारत अते कैनेडा ने एक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते लई गलबात तेज कर दिती है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अज कॉकरेज जनता पार्टी के आगुआ सौरव दास अते आशुतोष रंका नू 5 दिनों की न्यायिक हिरासत विच भेज दिता है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर द्वारा इलाके विच बीती रात गंगा नदी विच एक किश्ती पलटन नाल 13 लोगों की मौत हो गई। भारत विच 2015 अते 2024 दरमियान टीबी के नवे केसा च 21% की कमी दर्ज की गई है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार पंजाब की सिक्ख्या प्रणाली नू बदल रही है अते नौजवानों नू मजबूत बनाने लई रुजगार के मौके पैदा कर रही है। पंजाब के व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा ने हवाई फौज के सबका मुखी एयर चीफ मार्शल BS धनोआ सेवामुक्त नाल चंडीगढ़ विखे 9वीं CII मैनुफैक्चरिंग एक्सीलेंस नुमाइश का उद्घाटन किया। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वर्जित वालिया ने 24 अक्तूबर नू भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट उत्सव के संबंध में शहर में कढ़ी जाने वाली शोभा यात्रा के रूट 26 अक्तूबर नू प्रगट

इस प्रोग्राम में शामिल होने दे लई तुसी खत लिख दिओ रोज़ दे रोज़ जो है कीमती समा कढ के। तो लो जी लिखिया है सानू खत सहारनपुर तो सुरेश नारंग ते आशा नारंग छत्तीसगढ़ तो लिख रहे ने भागवत वर्मा गुलाबदास मानिकपुरी लच्छनपुर तो विश्वनाथ साहू ते दुर्गा राम साहू पेंड कुबाया तो लिख रहे ने पप्पू मनीष अमरोबाई राजू फौजी हरप्रीत कौर बलजीत कौर हरमेश पोतरे गुरनूर प्रनीत परी नवदीप बबलू ते माणो। चालकला नवा शहर तो लिख रहे ने सानू अमरजीत बंगा परमिंदर राजा कुलविंदर कौर ते सारांबा परिवार। गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछू कैंचियां तो लिख रहे ने प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन ते अभिजोत। ते इन्हां सारों नूं सुना रहे हैं मास्टर सलीम की आवाज़ में प्यारा जगीत है सुनदे हां। तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तो लो जी अगली चिट्ठियां आवाज़ा मार रही ने। लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साहब राही ते महाराज जहां हाजीपुर तो लिख रहे ने टोनी बाली लाली बिट्टू प्रेम ते सारा परिवार चकला बाजार समाणा तो संगीता जिंदल बापू राजा खुशदिल ते हसमुख जिंदल पेंट कुणियाणा यानी कि फजलका तो लिख रहे ने त्रिलोक सिंह दोता शिवजोत ते सारा परिवार ते दोस्तां दे नाम भी लिखे ने थले इन्होंने बलतेज ते पोला सुहाग सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर ते डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज ते साहिल कोई भी गीत

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपनी दोस्त कृतिका कौशल दे नाल। ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने, लिख रहे ने सानू टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, मनजीत ते परवीन। लिख रहे ने सानू मलौट तो जगतार गिल, परमजीत कौर, गैवी गिल ते अमन। बुरज सिदमा मलौट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज, जगतार ते सारा परिवार। पटेल नगर मलौट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता राणी, गगनदीप ते बेबी आरजू। नाभा तो लिख रहे ने सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरुमंत। लिख रहे ने सानू छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी तो किशोर, दीपक ते सारा परिवार। ते इन्हां सारे नूं सुना रहे हां सतिंदर परदेसी दी आवाज़ विच। एह गीत है, तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। लिख रहे ने अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष बेबी गव्या ते सारा परिवार सुनना चाहते ने जस्सी सिद्धू की आवाज़ विच कोई भी गीत। कनेरा मोला पटियाला तो लिख रहे ने मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, हार्दिक निहारिका ते वंश बत्ता। मोहला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा, गगन कपूर, गुंजन, लालसा।

चल रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लिख रहे ने मसीता डब वाली तो दर्शन लौट गुरनूर इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लौट मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत प्रणीता अर्जुन ते सारा परिवार आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर तो वैशैली शैलेश सुमित ते ध्वनि अमरगढ़ तहसील साधुल शहर तो लिख रहे ने कुलवंत मान लखविंदर कौर खुशप्रीत कौर गुरनूर हरविंदर राजा सिंह कुलविंदर कौर ते केएस मान मॉडल टाउन करनाल तो लिख रहे ने सुधीर नूतन संदीप सुनीता बिपाशा ते सारा परिवार मंडी गुलवाला राजस्थान तो ब्रिजलाल चौहान ते नीरज कुमार चौहान पिंड कुनाणा जिला फजलका तो लिख रहे ने मलकीत सिंह मनजीत कौर दपिंदर पोता गुरशबद जीत सिंह दर्शन सिंह ते सारा परिवार ते इन्हां सारे नूं सुना रहे प्यारे जगीत डॉली सिंह दी आवाज़ विच।

चल रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। ते लो जी, चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने ढेर सारियां, ते पढ़दे आं। ज़िला फजलका तों लिख रहे ने कुलदीप सिंह, कुलमीत कौर, चरणप्रीत सिंह, सिद्धू, यादविंदर ते सारा परिवार। बागपत उत्तर प्रदेश तों संजय, नमन, अपार ते सारा परिवार। ज़िला फजलका तों लिख रहे ने पप्पू, मुनीश, अमरो ते सारा परिवार। लिख रहे ने सानू मखू फिरोजपुर तों। बिला बजाज, हैप्पी कपूर ते मुनीश बजाज। जिला मोगा तों लक्ष्मण सिंह, वीरू, लखविंदर ते काली ते सारा परिवार। ते सारे तो गुजारिश है कि जद भी तुसी खत लिखदे हो तां साफ साफ हैंडराइटिंग विच लिख के भेजा करो ताकि पढ़न च आसानी हो जाए। लिख रहे ने सानू हनुमानगढ़ फाजिलका तों, सानू खत लिख रहे ने अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा ते सारा वर्मा परिवार। जमशेदपुर तों हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल, नवनीत ते पप्पी पाटिया। मलौट तों नानक चंद, बंटी कुमार, विजय कुमार ते सारा परिवार। इन्हां सारयां नूं सुना रहे हां मिक्की नरूला दी आवाज़ विच। गीत है

0: प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री दा। इस गीत नू आवाज दी है किशोर कुमार ते लता मंगेशकर ने।
1: हसो मत, बोलो।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन पूर्व 27 अक्टूबर सचखंड श्री दरबार साहब विखे श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा। उहदे संबंध विच वड्डे जिहड़े प्रोग्राम लीके गए आ अमृतसर की धरती ते समूह सिंह समावां ते धार्मिक जथेबंदियां दे सहयोग दे नाल जिथे अमृतसर शहर विखे गुरु घरां दे विच सवेरे 7 बजे तो 10 बजे तक सारे गुरु घरां दे विच प्रोग्राम लीके गए आ। ते इसे तरह मंजी साहब विखे बच्चियां दे शब्द कीर्तन, गुरबाणी कंठ, गुरमुखी लिखाई प्रोग्राम जिहड़े आ लीके गए आ। ते खालसा कॉलेज विखे भी ये समागम जिहड़े आ हो रहे आ। उहदे तहत 25 ते 26 अक्टूबर मंजी साहब विखे जिथे राग दरबार ते पड़ताल शब्द गायन दे भी कीर्तन दरबार होणगे। 26 अक्टूबर अमृतसर शहर विखे नगर कीर्तन भी कढ़िया जाएगा। 27 अक्टूबर श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब ते बाबा टल राय विखे जलौस सजाए जाएंगे। उत्थे सारा दिन जिहड़े कीर्तन दे समागम चलणगे ते नाल रात नूं आतिशबाजी होएगी। तिना समागमां दे विच कथा दे तौर ते भाई पिंदरपाल सिंह ते भाई बंता सिंह भी हाजिरी लवाउणगे। मेरी समूह संगत नूं बेनती कीती जांदी है कि इन्हां समागमां दा आपां लाहा लईए, वध चढ़ के श्री दरबार साहब विखे हाजिरी भरीए ते गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना, हौ मैं विचो जाए। ए फरमान सच्चे गुरु दी सेवा करन नाल प्राप्त हुए लाभ बारे दर्शाउंदा है। होर भी फरमान है कि सच्चे गुरु दी सेवा कीत्या हर प्रकार दे फल दी प्राप्ति हुंदी है। हिरदे नूं लगी जन्मां जन्मांतरां दी मैल भी मिट जांदी है, दूर हो जांदी है, क्योंकि उस प्रभु दा नाम पतिता नूं भी पावन कर दिंदा है। सतगुर सेव सर्ब फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दातार दा किन्ना वड्डा गुण है कि आप ही सृष्टि नू पैदा करके उस दे संचालन दी प्रतिपालना करन दी सेवा भी कर रहा है। भगत कबीर जी दे बचना विच ओ अकाल पुरख प्रभु प्यारियां ते ऐसी कृपा करदा है कि उना नू सेवक बना लेंदा है ते उस दे सेवक भी कुल खलकत दी सेवा विच आनंद महसूस करदे हन। अकाल पुरख आप जीवां नू जीवन मुक्त कर दिंदा है ते उस दे प्यारे संत उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम प्राणियां पासों जपौंदे हन। कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। सुनदिया हरविंदर सिंह वीर होरा पासों वार्ता, कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम।
1: संसार विच विचरदियां अनेकां सज्जन गुरमुख जन अते सेवा नूं समर्पित प्यार करन वाले इंसान अक्सर सानू मिलदे हन जिन्हां दा सारा जीवन दूसरां लई ही बीतदा है। भाव के उन्हां ने भला ही करना है पर उपकार ही करना है। वो अपना जीवन तां भली पांत बताउंदे ही हन परंतु दूसरां दा जीवन भी सवार दे जांदे हन। ऐसे प्यार करन वालियां नूं गुरमत दे पंधी आख्या जा सकदा है अते उन्हां दी जिंदगी दा मुख मंतव ही भला करना है पर उपकार करना है। समुची मनुखता नूं कुलावे विच लै के प्यार वंडना है। जो ऐसे परउपकार दे कारज कर जांदे हन उह जन्म मरण तों उपर उठ जांदे हन, अमर हो जांदे हन। ऐसियां रूहां नूं संत जन वी कहा जा सकदा है क्योंकि जिथे परउपकार दे कारज करदे हन उह समाजिक कल्याण दा सरनामा वी बणदे हन। उत्थे उह सानू कलजगी जीवां नूं उस परमात्मा नाल वी जोड़ दिंदे हन। उस परमात्मा नाल मिलाप दा उह साधन वी बण जांदे हन। ऐसे भले पुरखां दी प्रथा इही फरमान है, जन्म मरण दुहूं मैं नाहीं, जन पर उपकारी आए, जिय दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। ऐसे जन आप तां उत्तम हुंदे ही हन। इन्हां दी बाणी भाव मुखार बिंद तो निकले मिठड़े बोल भी उत्तम हुंदे हन। जो मुखों बोलदे हन उस नाल सब दा भला हुंदा है, सब नूं आत्मक सुखां दी प्राप्ति हुंदी है, दुनियावी सुखां नाल झोली भर जांदी है। ऐसे संत जनां दे श्रेष्ठ बचन सुन के मन अंदर ऐसी शरदा उपजदी है कि हिरदा प्रभु प्रेम विच ओत पोत हो जांदा है अते परमात्मा

सह सेवा कीति सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसम्मल पन्ने। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। सच्चे गुरु दे सच्चे सेवक अकाल पुरख दे चरना विच नेता प्रति अरदास बेंतियां करदे ही रहंदे हन ते उस प्रभु दे सोने चरना दा जाप करदे रहंदे हन। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे

सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रब चरण तुम्हारे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: हिंदुस्तानी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।

0: उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को भी स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSME इसको सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली में आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में उन्होंने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया है। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रूपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर आया। आनंद कुमार विल कुमार ने पराग्वे में स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। आनंद कुमार प्रतियोगिता में अब तक 2 पदक जीत चुके हैं। हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 854 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज और DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लाहौर पेश है अज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विश्व मानव दिवस बारे जानकारी लवांगे दीपक कुमार सिंगला होना को तिबारी परजीवी नाल पशुओं च होने वाले नुकसान बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर हरकीरत सिंह होना को जनाली नवे फलदार बूटियां की देखभाल बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर सवरीत

शाम 7 बज के 45 मिनट पे हिंदी वार्ता सुनोगे, जिसका विषय रहेगा भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रि, जिसकी जानकारी देंगे राजेश आदिया जी। रात 8 बज के 10 मिनट पे जन सेवा तो देश सेवा दे दायित्व 3 तलाक बारे जानकारी लवेंगे एडवोकेट गुरविंदर सिंह प्रूथी हुआ को। रात 8 बज के 40 मिनट पे सुनोगे पंजाबी गीत। तो रात 10 बज के 2 मिनट पे सुनोगे प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश। ऐसी आज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्राम का वेरवा उन्हों का प्रसारण समा। आओ हुण सुनदे हां देशभक्ति समूह गाना।

मीडियम वेव 343 6/6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, सीडीआरएम 864 किलोहर्ट्स, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 6:20 मिनट हो रहे ने। हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: ऊर्जा दक्ष उत्पादों के लिए मानक ऊर्जा की कम खपत, कम लागत और बेहतर दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए मानक पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने तथा स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जिसका मुख्य कार्य मानकों का निर्धारण करना है। मानक निर्धारण के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स का भी संचालन करता है, जैसे कि ISI मार्किंग स्कीम, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT प्रोडक्ट्स, सोने और चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग स्कीम। यद्यपि भारतीय मानकों का अनुपालन जनरली स्वैच्छिक है, हालांकि कई ऐसे उत्पाद भी हैं जिन पर लोगों के हितों और सुरक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय मानकों का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करके अनिवार्य किया गया है। अब तक भारत सरकार द्वारा 720 से अधिक उत्पादों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य केवल एक दिवस मनाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि सही अर्थों में हमारा उद्देश्य इस अवसर पर उद्योग जगत, उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, रेगुलेटरी बॉडीज, अकेडमिया, R&D इंस्टीट्यूशंस तथा अन्य हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना भी है। इसके माध्यम से हम गुणवत्ता की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था के निर्माण में मानकों की भूमिका के प्रति साझे दृष्टिकोण शेयर्ड विजन को और अधिक सुदृढ़ भी करना चाहते हैं। विश्व मानक दिवस 2026 मनाते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था और व्यक्ति मात्र की नहीं है। इस व्यवस्था में प्रत्येक हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इस विश्व मानक दिवस पर हम सभी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण विषय के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनर्दोहराएं और एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने का संकल्प लें। आप सभी को विश्व मानक दिवस 2026 की पुनर् बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हाँ जी, क्या बात है जी। ते दुध बहुत चाहिदा हुंदा लवेरियां तो, पशुआं तो, चांदे असी हाँ खुराक दईए, सांभ संभाल रखीए,
2: बिल्कुल।
1: पर इस दे नाल नाल पशुआं नूं बाहरी परजीवियां तो बड़ा नुकसान हुंदा।
2: हाँ, जे पशु ही बीमार हो गया तो फिर दुध दी आस कित्थों रहू।
1: बाहरी परजीवियां नाल पशुआं च होण वाले नुकसान, ये वार्ता सुनाने हाँ डॉक्टर हरकीरत सिंह दी।
3: पशु पालक वीरो, आप सब नूं मेरे वल्लों डॉक्टर हरकीरत सिंह, प्रोफेसर पशु परजीवी विज्ञान विभाग गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज दा जेड़ा अपना विशा वो ये है कि बाहरी परजीविया नाल पशुआं नूं होण वाले नुकसान। सो सब तो पहला आप ये गल समझिए कि किसी भी किते नूं शुरू करन लई ते उत्तों मुनाफा कमाउण दे लई पशुआं दा रोग मुक्त होना बहुत जरूरी है। ते पशुआं नूं होण वालियां भिन्न भिन्न प्रकार दीआं बीमारियां विच परजीवी रोग काफ़ी महत्वपूर्ण मन्ने गए ने। हुण आपां गल करिए कि परजीवी की हुंदे ने ते इह किन्नी प्रकार दे हुंदे ने। सो पशु पालको, परजीवी जिहड़े आ उह छोटे छोटे जीव ने जिहड़े अपने जीवन दे निर्वाह दे लई जानवरां ते निर्भर करदे ने, उहनां विच रोग फैलांदे ने, जानवरां दी खुराक दा वड्डा हिस्सा हजम करदे ने, अपनी जनसंख्या नूं जानवरां विच वधाउंदे ने ते जानवरां दी मौत दा कारण वी हो निबड़दे हन। इन्हां परजीवियां नूं आपां दो मुख कैटेगरियां विच वंड सकदे हां। पहली कैटेगरी जिहड़ी आंदी आ उह आंदी आ अंदरूनी परजीवी। अंदरूनी परजीवी उह परजीवी ने जिहड़े पशुआं दे शरीर दे विच रहिंदे ने ते इह पशुआं दी खून वाली प्रणाली या पाचन प्रणाली विच मिलदे ने, जिवें कि तुसीं मलापां बारे भली भांत जाणू हो। दूजी जिहड़ी कैटेगरी आंदी आ उह आंदी आ बाहरी परजीवी। बाहरी परजीवी उह परजीवी ने जिहड़े पशुआं दे शरीर ते रहिंदे

0: हाँ जी, ते कल दा प्रोग्राम ते मौसम दी हाल बयानी भी फिर दसो जी।
1: कल सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च टमाटरां दी पनीरी तैयार करन बारे जानकारी दित्ती जाएगी। शाम 6:30 बजे किसान वाणी प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। मौसम बारे कोई खास चेतावनी नहीं है कमल जी।
0: चलो चंगी गल है, रब दी
1: झोने दी फसल सामने तैयार खड़ी है।
0: हाँ
1: रब भली करे।
0: बिल्कुल जी,
1: चलिए आपा।
0: चलो जी,
1: जय हिंद।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर के डी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे बड़ी कोस्टलाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर

0: कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में पूरी जो कोस्ट लाइन्स है वहां पर भी सफल रहा है?
1: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउस कह लीजिए, रहेंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
0: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सके। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो। ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा, और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है, और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा, और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्नअराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से

0: एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है।
1: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो पहले तीन दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता तीन दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो थ्री टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है टर्नओवर टाइम कितना है, और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का एक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे तीन पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये तीन पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
0: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार।
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पे ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
0: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
1: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, आज से नहीं पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका हुतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो

0: फेरे होते हैं, वो आते थे एंड अभी भी आते हैं। और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी, और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे। और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे। कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है, दोनों का पैरेलल विकास दिया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का?
2: देखिये, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, और वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज है के विकास क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए।

0: समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
1: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलाइन वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खासतौर पर खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक

0: दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU का होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं। एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर, गुजरात ने जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं, जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी एक बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
0: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा।

0: जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था,
1: जी
0: वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेज में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है
1: जी
0: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जनसाधारण के लिए ये एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब
1: जी
0: ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छा, एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी।
0: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट

0: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और फूड कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है। समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे वन बन रहा है, जो वाराणसी और अल्जिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई है। और वैसे ही अगर आप देखे हैं, कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा था। तो अभी आप देखिए कि ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है। बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है।
1: बिल्कुल,
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है। गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रही है, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से।
1: जी,
0: तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है।
1: जी बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
0: धन्यवाद जी, शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेबसाइट राही भी सुन सकते हो। लाउन पेश है हिंदी वार्ता प्रोग्राम, जिसका विषय है भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रे। वार्ताकार ने राजेश आध्या।
4: भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों और आत्मिक उत्थान का एक माध्यम होता है। आज की वार्ता में हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की, जो भारतवर्ष में न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है, यानी शारदीय नवरात्रि। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौ रातों का समय। इन नौ रातों और 10 दिनों के दौरान वीरता, भक्ति, अनुशासन और दिव्य शक्ति के प्रतिरूप देवी माँ की पूजा की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीने में। इनमें से चैत्र और अश्विन की नवरात्रियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि की। यह नवरात्रि शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं, अपितु यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों के स्वयं के अंदर झांकने और सुधारने का अवसर देती है। शारदीय नवरात्रि का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गूढ़ है। पुराणों के अनुसार इस त्यौहार के पीछे मुख्य कहानी देवी दुर्गा और

राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध की है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने धरती और स्वर्ग में उत्पात मचा रखा था, जिससे समस्त देवता और मानव परेशान हो गए। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई मनुष्य, देवता या असुर मार नहीं सकता था। इस प्रकार महिषासुर समस्त शक्तियों के सक्षम अजय था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह अहंकारी हो गया और उसने त्रिलोक में कहर बरपाना शुरू कर दिया। समस्त देवता दुष्ट राक्षस को हराने में असमर्थ थे, इसलिए सभी देवता

शक्ति के अंतिम अवतार के रूप में उभरी। हिमालय ने देवी को अपना वाहन सिंह प्रदान किया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हो गई और देवी ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया, जो कि 9 दिनों तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल के प्रहार से दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया। जिस दिन देवी ने महिषासुर का वध किया, वह दिन विजयादशमी कहलाया। विजयादशमी केवल महिषासुर मर्दनी की विजय का दिन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में इसे धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यही दिन श्री राम की रावण पर विजय का भी प्रतीक बन गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है। जैसे देवी का पहला रूप शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, जो कि विनम्रता और धैर्य की प्रतीक है। दूसरा ब्रह्मचारिणी, जो कि तपस्या, संयम और साधना की प्रतीक है। तीसरा चंद्रघंटा, जो कि साहस, सौंदर्य और शौर्य की प्रतीक है। चौथा कुष्मांडा, जो कि सृष्टि की रचनात्मक शक्ति और प्रकाश की प्रतीक है। पांचवा स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। छठी कात्यायनी, वीरता और निर्णय शक्ति की प्रतीक है। सातवीं कालरात्रि, अंधकार और भय का विनाश की प्रतीक है। आठवीं महागौरी, शांति, शुद्धता और पारदर्शिता की प्रतीक है। नौवीं माँ सिद्धिदात्री, आत्मिक विजय की प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि का एक और ऐतिहासिक पहलू यह है कि वैदिक काल से लेकर यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान और उसके पूजन का पर्व बन चुका है। ऋग्वेद से लेकर देवी महात्म्य तक भारत की परंपरा में नारी को केवल पूज्या ही नहीं, अपितु सृष्टि, शक्ति और सृजन की मूलाधार माना गया है। नवरात्रि में जब हम कन्या पूजन करते हैं, तो वह इसी बात का प्रमाण है कि एक कन्या भी स्वयं माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। नवरात्रि में पूजा विधि, भोग, वेशभूषा, मंत्र, आरती आदि परंपरागत तरीके से होते हैं। जैसे पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना होती है। इस अवसर पर किसी कलश या पात्र में जल, मिट्टी, फूल आदि रखकर देवी को निमंत्रित किया जाता है। हर दिन एक नया रूप, एक नई शिक्षा और जीवन को संवारने वाला नया संदेश लेकर आता है। यह क्रम हमें प्रतीकात्मक रूप से यह सिखाता है कि कैसे साधक तमोगुण से रजोगुण और अंततः सतोगुण की ओर अग्रसर हो सकता है। यह आत्मा की उस यात्रा की कथा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। नवरात्रि में भक्त उपवास रखते हैं, संयम और अनुशासन अपनाते हैं। इसमें आहार सीमित हो जाता है, मांस, अंडा, कभी कभी अनाज, प्याज, लहसुन आदि से परहेज किया जाता है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। प्राय आस पड़ोस की छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भक्त उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में पूड़ी, हलवा, माँ की लाल चंद्रिया भेंट करते हैं। यह स्त्री शक्ति और मातृ आदर्श की स्तुति है। नवरात्रि में भक्तजन आरती एवं प्रसाद के साथ देवी माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। आराधना के दौरान दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य आदि ग्रंथों का पाठ होता है। भजन कीर्तन और भगवती जागरण मध्य रात्रि और सुबह तक चलता है। शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, अपितु यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव है। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में श्री राम लीलाओं का भव्य आयोजन किया जाता है, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित राम कथा का मंचन किया जाता है। इनके अतिरिक्त दशहरा पर्व और माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धुनों पर पूरा समाज एक साथ नाचता है, जहाँ आराधना और आनंद का अनूठा संगम दिखाई देता है। पश्चिमी बंगाल, असम और ओडिशा में दुर्गा पूजा एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है, जहाँ देवी की मूर्तियाँ, पंडालों की सजावट और सामूहिक आरती एक धार्मिक अनुभूति से कहीं अधिक एक जीवंत लोक महोत्सव बन जाती है। दक्षिण भारत में बोमे गोलू की परंपरा है, जहाँ घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है। नवरात्रि में लोग मिलजुल कर
पूजा करते हैं, मेले लगते हैं, समूहों में गाना बजाना होता है, भोजन

0: बांटा जाता है, गांवों शहरों में गरीबी समृद्धि के भेद मिट जाते हैं। आधुनिक समय में बढ़ रही पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति का असर नवरात्रि के आयोजनों में भी दिखाई देता है। लोग अब मिट्टी की मूर्तियां बनवाते हैं, अधिकतर सजावट प्राकृतिक सामग्री से करते हैं। पंडाल थीम बहुत रचनात्मक हो चले हैं, सामाजिक मुद्दों पर आधारित, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर आधारित पंडाल तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी आजकल इसे पर्यटन पर्व के रूप में प्रमोट कर रही हैं। कई स्थानों पर उत्सव बड़े मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित होते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, इससे हस्तशिल्प, कपड़ा, कला आदि को बढ़ावा मिलता है। शारदीय नवरात्रि में हमें कई प्रकार के संदेश भी मिलते हैं, जैसे कि आत्मशक्ति। जीवन में संघर्ष आए तो डटकर सामना करना सीखें। माँ दुर्गा की कथा हमें यही सिखाती है कि अच्छाई में ही शक्ति है। इसके अतिरिक्त नारी सम्मान का संदेश मिलता है कि नारी किसी मातृत्व या स्नेह की देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति है, नेतृत्व है, साहस है। इसके साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना का भी संदेश मिलता है कि सत्य, न्याय, करुणा और समर्पण सिर्फ पूजा में ही नहीं अपितु अपने कर्मों में भी जरूरी है। जब हम शारदीय नवरात्रि की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह केवल पर्व नहीं है, यह जीवित परंपरा, संस्कार, शक्ति का आह्वान और आत्मिक उन्नति की यात्रा है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, सामाजिक समरसता और आधुनिकता सब इस महोत्सव के रंग हैं। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि अज्ञान, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि हमारे भीतर के महिषासुर हैं और उन्हें परास्त करने के लिए हमें अपने अंदर की दुर्गा को जगाना होगा। जब यह जागृत होगी तो विजयादशमी वास्तविक रूप से आत्मा की विजय बनेगी। अंत में यही कामना है कि माँ दुर्गा सभी को शक्ति, करुणा, संतोष और आशीर्वाद प्रदान करे, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके मन में श्रद्धा जगमगाए और जीवन सच्चाई और न्याय पथ पर अग्रसर हो।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हिंदी वार्ता। भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रे वार्ताकार सन राजेश आदिया।

मिडिल वेव 343 एचआरएचए मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 854 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज अते डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 8:30 हो रहे ने। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।

0: ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ।
1: इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। इसके हत्या के बाद उसके पिता ने जो कहा है वो उससे भी बढ़कर है कि इसके लिए हम जो लोकल MLA है उसकी सह पे ये हो रहा है। तो मैंने तुरंत अपने माननीय गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखा और हमें पंजाब की सरकार पे, पंजाब की पुलिस पे, पंजाब के किसी पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि इस ये सारी जो केस हुआ है इसकी इंक्वायरी CBI को दी जाए।
0: सरकार ने गन्ना किसानों वालों उठाए गए मुद्दों की जांच करन अते उन्हां दियां चिंतावां नूं दूर करन लई ढुकवें उपावां दी सिफारिश करन वास्ते कमेटी दा गठन कीता है। नीति आयोग दे साबका मैंबर प्रोफेसर रमेश चंद इस कमेटी दी प्रधानगी करनगे। कर्नाटक ते महाराष्ट्र दे गन्ना किसानां दे प्रतिनिधियां दी केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री अते केंद्रीय खपतकार मामले, खुराक ते जनतक वंड मंत्री नाल होई मीटिंग विच लए गए फैसलियां तों बाद इह कमेटी बनाई गई है। खपतकार मामले, खुराक ते जनतक वंड मंत्रालय ने कहा कि कमेटी गन्ना किसानों नूं खेती लागतां ते होर संबंधित कारकां नूं ध्यान विच रखदे होए मेहनतां नाल वापसी विच वाधे दी मंग दी जांच करेगी। इह खंड उत्पादन लागतां, बाजार कीमतां ते खंड मिलां दी माली विहारकता दे संदर्भ विच खंड दी मिल प्रक्रिया तों बाद दी घट्टो घट विक्री कीमत विच सोध दी मंग दी वी जांच करेगी। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे विश्व स्केटिंग खेडां विच मर्दां दी 1000 मीटर स्प्रिंट श्रेणी विच चांदी दा तमगा जित्तिया है। भारत अते वैसट इंडीज़ विचकार 5 मैचां दी 2020 लड़ी दा चौथा मैच अज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम विखे खेडिया जा रहा है। ताज़ा खबरां मिलण समय तक वैसट इंडीज़ ने 18 ओवरां विच 3 विकटां दे नुकसान ते 219 दौड़ां बणाईआं। आखिर च खास खबरां। सरकार वालों रेलवे मुलाजमान 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस मंजूरी, 5 साल की म्याद लई राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम नू जारी रखण नू प्रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैनेडा नाल एक उसारू ते अगां वधू रणनीतिक भाईवाली बनाउण लई वचनबद्ध। भारत ने नागरिक बुनियादी ढांचे ते हमलिया की निखेधी करदिआं साउदी अरब नाल एकजुटता प्रगट की। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343 शहरा 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 8:40 हो रहे ने। आओ हुण सुनदे हां पंजाबी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है। और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी

0: अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके। समय समय इसको

0: फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट एफडीआई आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
2: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है। भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह स्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है। और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनकी हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट चल रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों

0: से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं, जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
2: देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
1: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
3: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
1: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
4: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, इस धरती को, इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
0: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह

0: प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिए। पांच मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रात्रि से अधिक श्रद्धालु और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Velkumar wins silver medal in men's 1,000 meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its sub-schemes, along with revisions to the eligibility criteria, coverage and rates of assistance for disability pension beneficiaries. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. He said the benchmark disability criterion for eligibility will be reduced from 80% to 40%.
2: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
1: Pension schemes for senior citizens and widows, as well as the family benefit scheme, will continue in their existing form. The union minister said the government

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
3: So I'll read the message of Honorable Prime Minister. I'm pleased to learn that the Ministry of Culture, through the National Center for the Arts, is organizing an international conference in New Delhi on the theme Bharat's Culture Connections Across the Globe. I warmly welcome the scholars, researchers, diplomats, and other distinguished participants from India and abroad who are participating in this important conference. For centuries, India's civilizational journey has been a story of cultural exchange. Centers of learning, such as Nalanda, strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Pre Kuk in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: सचिव ने बृहत्तर भारत के बारे में बताया।
3: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता के दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?

0: पहले ये समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है। इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है। इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है। तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं। तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ संवाद किया है और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं। आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है। तो
1: जी
0: समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे। दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी
0: बल्कि आपसी सीधे और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में।
1: परमेश्वर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं। तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
2: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है।
1: जी
2: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं। विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया।
1: जी
2: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थी वो चली गई थी, कलाकृतियां थी, पांडुलिपियां थी, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुराना पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है।
1: जी
2: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनैतिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित की। और हम जानते हैं कि आज बहुध्रुवीय दुनिया है, ऐसे में भारत भी एक प्रमुख ध्रुव के तौर पर उभर रहा है। ये बहुत सी घटनाओं से हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं और देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
1: जी वाधवा जी, भारतीय विचारों और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हुआ प्राचीन काल में थल और समुद्री मार्गों से हुआ था और आज की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने सभी सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, व्यापारिक संबंधों की बात हो या ऐसे कूटनीतिक संबंध हो जिन्हें आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिन्हें बढ़ाया जाना भी आवश्यक हो, उसके लिए भी पर्यटन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ाने के लिए लगातार समुद्री मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
0: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण है, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म ने भी भारत

0: भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है, तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं। और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे।
1: जी
0: हम देखें तो इसका सांस्कृतिक मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बेहतर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा
1: जी
0: भारत का विश्वास है। और संस्कृत की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण
1: जी
0: इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और भारतीय परंपरा में जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
1: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है, तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है, और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पर आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं, उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
0: जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है, और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती है। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था, और मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन की केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फाहियान और ह्वेनसांग जैसे यात्री
1: जी
0: भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया। और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए। तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी मान्यता दे रही है। वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था, तो
1: जी
0: इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी

0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रचार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी, और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध बृहत्तर भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहत्तर भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंध देशों के जब बनते हैं तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है, और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आपने सिल्क रूट का भी जिक्र किया था। आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 72 भारत में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें, या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
0: बेहतर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। कभी विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान और साझा हितों पर बहुत जोर है, आज के कॉन्टेक्स्ट में, अब हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे, और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा, और हमारी साझा

0: विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है, तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो।
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026

0: संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी,
0: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है, और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
1: जी,
0: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रसार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए, और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी,
0: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाधवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
2: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी करीबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु है। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत

0: की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं। और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है। और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं, बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बेहतर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं, जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों।
2: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है। और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी, उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया, जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली, दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु, विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए। और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं, लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार

0: सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है।
2: आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो की घड़ी ते 10 बज रहे ने। आओ हुण सुणदे आं अज दियां मुख खबरां। सरकार वल्लों रेलवे मुलाजमां नूं 78 दिनां दे उत्पादकता आधारित बोनस नूं मंजूरी। 5 सालां दी म्याद लई राष्ट्रीय समाजिक सहायता प्रोग्राम नूं जारी रखण नूं वी प्रवानगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनेडा नाल एक उसारू अते अगा वधू रणनीतिक पाईवाली बनाने लई वचनबद्ध। भारत ने नागरिक बुनियादी ढांचे ते हमलियां दी निखेधी करदियां साउथ अरबी नाल एकजुटता प्रगट कीती है। मानसा विच नशे विरोधी कारकुन परविंदर सिंह चोटा दा कथित कातल गिरफ्तार। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भरोसा दिता है कि इस विच शामिल किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा। BSF ने तरन तारण की ड्रोन विरोधी टीम विच तैनात पंजाब पुलिस के कांस्टेबल तो 15 किलोग्राम तो वध हीरोइन जब्त की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज 154 नवे आम आदमी क्लीनिक लोगों नूं समर्पित किए हैं। खेतीबाड़ी और विकास भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की उपजीविका विच सुधार करके एक आलमी भोजन भंडार बनन वल वध रहा है। सरकार वालों गन्ना किसानों नूं दरपेश मुद्दे की जांच लई एक कमेटी का गठन। पंजाब कर विभाग वालों 429 करोड़ रुपए के GST धोखाधड़ी नैटवर्क का पर्दाफाश। लुधियाणा विच एक ट्रांसपोर्ट अते दो साथियों खिलाफ मामला दर्ज। भारत के आनंद कुमार वल कुमार ने विश्व स्केटिंग खेडों विच मर्दां दी 1000 मीटर स्प्रिंट श्रेणी विच चांदी का तमगा जितया है। ये सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो की घड़ी ते 10:02 हो रहे हैं ते हुण वेला हो गया प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। जी हां, तुहाडी फरमाइश के प्रोग्राम हाजिर हो गया तुहाडा दोस्त गगन और जिस विच असी थोड़ियां फरमाइशा लवांगे व्हाट्सएप राही कॉल दे राही। तो साडा जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर है 94655 36077 मिला के साडे तक पहुँच सकते हो, सानू मैसेज कर सकते हो तो अपनी हाजिरी लवा सकते हो। उस दे नाल ही जे तुसीं साडे नाल गलबात करना चाहते हो तो साडा लैंडलाइन नंबर है 01812342173, 01812 लाणा ना भुलना। जे प्रोग्राम का आगाज हो गया और प्रोग्राम का पहला गीत थोड़े सामने पेश है, आनंद माणो जी इस गीत का।

जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा मैसेज भी पढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम से जुड़न लई। और इस तो बाद जोड़ा मैसेज आया कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मैसेज आया मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू ते वंश बत्ता, हार्दिक का मैसेज सानू आया। और इस तो बाद जोड़ा मैसेज आया सुखवीर कौर, कोमलप्रीत कौर, रोमनप्रीत कौर मैसेज कर रहे हैं संगरूर तो, कहते कोई भी गीत सुना दो जी। हाँ बिल्कुल गीत भी सुनावांगे। और इस तो बाद जोड़ा मैसेज आया अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिवियम जैन जी। हाँ बिल्कुल फरमाइश भी थोड़ी पूरी करांगे। लो इस तो पहला एक गीत सुन दें, आनंद माणो जी इस गीत का।

जिला कसूर जाहरमेव अब्दुल गफूर मैसेज कर देने सानू बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम चुटन लई। लो जी हुण वेला हो गया साडे इस प्रोग्राम दे अगले गीत दा जी, आनंद माणो जी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50 लाख रुपए नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे की जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

व्हाट्सएप जरिए प्रोग्राम में शामिल होने तुसी 94-655-36-077 ते अपना सुनेहा भेज देना या फिर 0181-43-171 नंबर डायल करके फोन लाइन के जरिए साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बनना जी। कर रहे हैं शुरुआत इस प्रोग्राम की सरबजीत की आवाज़ के नाल।

सुनिए जी, अगला गीत फिल्म लौंग दा लिशकारा विचों, और गीत भी इस फिल्म दे नाम दा, यानी कि इस दा ही टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। पिन सन फरमाइश आई है जी, पिन साबू आणा फाजिलका तो करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश मानव, अनुप्रीत ते परीश कंबोज जी दी शुक्रिया प्रोग्राम दे विच शामिल होने दे लई। ते पप्पू राजा खुशदिल जी, तुहाडा भी स्वागत सारा परिवार। संगीत राणी जी, पप्पू स्माइल खुशदिल, हंस मुकलाल, संदीप सुनीता, बंटी जिंदल, आरजू महक खुशदिल, ते पूरा खुशदिल परिवार जुड़िया होया जी, तुहानू भी इस गीत विच शामिल कर रहे हैं। स्वागत तुहाडा बहुत बहुत। ते हरजिंदर सिंह बराड़ फिर तो सुनेहा भेज रहे हैं जी, बिल्कुल तुहाडा सुनेहा पहुँच चुका है साढ़े कोल, तुहाडा भी स्वागत कर देना हाँ, ते इस गीत के जरिए तुहानू भी शामिल कर रहे हैं।

अगले गीत सुनागे। फरमाइश आई है जी गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रतिष्ठा संधु जुड़े हुए ने प्रोग्राम। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत भी तुहाडा प्रोग्राम दे विच। अगला गीत एक सदाबहार पंजाबी नगमा।

प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत ते इस वेले स्टूडियो कड़ी समा दस रही है कि जी दिन चढ़ गया है वीरवार दा। सो 15 अक्टूबर दा दिन नवे दिन दी शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत स्वागत थोड़ा सारे दा प्रोग्राम दे विच। कृष्ण लाल राजू दीपू शीतल शारदा विवान गोपाल पिंड मलपुरी बिश्ना जम्मू तो जुड़े हुए ने जी। स्वागत करता हाँ प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत बहुत। तो लो तुहाडी नज़र कर रहे हैं जी अगला गीत शाज़े मंसूर की आवाज़ दे विच चरखा।

प्रोग्राम स्वागत है आखिरी पड़ाव वाल वध रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनांगे नूरा सिस्टर्स की आवाज़ दे विच, ते इसे नाल प्रोग्राम स्वागत नूं इत्थे समेटदे हां ते तुहाडे तों हरप्रीत लैंदा है इजाजत।

0: हत्थी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हत्थी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा। नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तू पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट तू पाके फिर दा लिखन न जाने उड़ा। वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा, वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा।
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले, लुटके सब कुछ ले गई जट दा ककरे हाना पले, लुटके सब कुछ ले गई जट दा ककरे हाना पले।

तू कीता वादा, चाड़ के ले आऊं मैं थाना जे तू कीता वादा। थानेदार करवाऊगा ते तू करदा गोहा कूड़ा, थानेदार करवाऊगा ते तू करदा गोहा कूड़ा। वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा, वे मैं कद पाया थी प्यार तेरे नल गूड़ा।

0: प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
1: नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
0: वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया

मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। अकाल पुरख प्रभु पूरा वैद है, ओ अपने प्यारियां दे सारे दुख निवृत्त कर दिंदा है, इथों तक कि इंसान जन्म अते मरण दे गेड़ तो भी मुक्त हो जांदा है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जमकी फंदा। इस शब्द का गायन कीता है भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। प्रभु दे पै विच रहण वाले जेड़े प्राणी उस नारायण प्रभु ते भरोसा रखदे हन, उस नूं अंग संग समझदे हन, उना तों जम वी कोहां दूर रहिंदे हन। नाल नारायण मेरा, जम दूत ना आवे नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे। इस शब्द का गायन कीता है भाई ओंकार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: नाल नारायण मेरै, जमदूत न आवै नेरै, कंठ लाए प्रभ राखै, सतगुर की सच साखै। इस शब्द का गायन कीता सी भाई ओंकार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी अमरिंदर सिंह।
1: विचार अधीन पावन पवित्र शब्द गुरु अर्जन साहब जी का सोरठ राग दे विच उचारण कीता होया गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र अंक 630 दे उत्ते सुभायमान है। पंचम गुरदेव इस पावन शब्द विच समझा रहे हन कि हर एक मनुख दी कोशिश हुंदी है कि मैनू जीवन दे विच सफलता प्राप्त होवे। हुण जीवन विच सफलता उदों प्राप्त होएगी जदों सानू पूरे गुरु दी शरण दी दात प्राप्त हो गई। पूरे गुरु दे मिलाप तो बिना कदे भी असी जीवन दे अंदर सफलता नू प्राप्त नहीं कर सकते। विचार अधीन पावन पवित्र शब्द दीआं रहाउ वालीआं पंक्तियां दे अंदर गुरदेव बख्शिश करदे हन कि गुरपूरै पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाउ। हे भाई, जिस मनुख नूं पूरे सतगुरु जी ने जीवन दे विच सफलता बख्शिश कीती है उस दे सारे विकार रूपी वैरी प्रभु ने

पौड़ी बिन सतगुरु की न पाया, बिन सतगुरु की न पाया। सतगुरु विच आप रखण कर प्रगट आख सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सो चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: सराम राजनता नान जंतु पाए कै संभाले सब ना जिन करता करना किया चिंता फिक्रनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने भाग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां लख पुना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहयोग बेबान लख सूरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लग गया ध्यान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा नी सा।

सवैये महले दूजे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार कारण समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो ता धरयो मस्तक हथ सहज आम्यो उठो छाजे सुर नर गान मुन बोहज अगाजे मार्यो कंटक काल गरजे तावत लियो बरजे पंच भूत एक कार राख ले समाजे जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सार राथ उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजा लहना जगतर गोर पारस मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खान उतार।

तो दिड़ियो नाम अपार, बिमल जास बिथा, साध

शब्द संसार सार रह जगत रे जल पदम विचार कल्प तार रोग विदार संसार।

ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਾਲ ਸਾ ਛਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ।

आपत दीप मजा लहना जगत्र गोर पारस।

0: रस जाने।
1: तारो संसार माया मदमोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रेतर सिद्ध न छोटे सथ, दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो यो तथ, ताहे कहा परवाह काहु की, जाके बसीस तरयो गुर हथ, ताहे कहा परवाह काहु की, जाके बसीस तरयो गुर हथ।
2: अंत न पावत देव सबे मनो, इंदर महासेव जोग करी, कुन भेद बिरंच बेचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर ज्योत अर्जुन मोहे तरी।
3: अब राखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखस फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत वस्त्र दीन बहुसाज, सोदामा पदाते राखिया, गनका पड़त पुरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।
4: नाम नामन नाम रस खान, अर पूजन नाम रस। सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी, तन सतगुर सेवियो। जिस पसाए गत अगम जानी, कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास। सकियत जन्म कल उचर, गुर परस्यो अमर परगास।
5: सत सूरो सील बलवंत, सत पाए संगत सगन। गरु मत निर्वैर लीना, जिस तीरज तुर तवल तुजा। सेत बैकुंठ बीना, परसे संत प्यार। जहे करतारे संजोग, सतगुरु सेव सुख पायो, अमर गुर की तो।

हमें आव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खाई, माया मोह परम पुले सुत दारा से प्रीत लग।

ਆਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूरे अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जानम जानम दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा

सरी छंत महल्ला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

सतगुरु मिला सुभाए, सहज गुण गाइए जियो, हर जियो कृपा करे, ता नाम त्याइए जियो, सतगुर मिला सुभाए, सहज गुण गाइए जियो, गुण गाए विगसै सदा आनंद लां, जा आप सच पावै, अहंकार हो मैं

सतसंगत मिला वड भाग, ता हर रस आवे

सहज स्वभाव हर मन पावे सदा अतीत बैरागी हालत पालत सोबा जग अंतर राम नाम लेव लागे हरख सोग दोहाते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले वड भाग हर रस आवे जियो दूजा पाए दुख हो मन मुख जाम जोहे आजियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहे आजियो माया दुख मोहे हौ मैं रोहिया मेरी मेरी कर तो विहावे जो प्रभ दे तिस चेता नाही अंत गया पछुतावे बिन नावे को साथ ना चले पुत्र कलत्तर मा

नानक नाम मन पावे।

नमो नाम मिली वडयाए। नानक नाम मन पावे, कर कृपा ले हो मिला।